रेडियो अमन, कभी नरम कभी गरम। म्यूजिक, मस्ती और खूबसूरत पैगाम हम लेके आएंगे, मोहब्बत के एहसास का खूबसूरत अंदाज। रेडियो अमन, आपके मन का अमन।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक दे सोने ते बाबरकत ना कुल, जो के बहु मेहरबान ते निहायत रहम करण आला है। रहमान है, रहीम है, करीम है, अजीम है, खालिक है, मालिक है, राजिक है, मुश्किल कुशा ते हाजत रवा है, ते जहंदे सिवा ना कोई मुश्किल कुशा है ते ना कोई हाजत रवा है। अल्लाह ताला अपनी जात अपनी सिफात दे अंदर वाहदहू ला शरीक है, जो चावे कर सकदा है, कुन फयकून दा मालिक है। सारे जमीन व आसमान तमाम खलकत पूरी कायनात को वजूद चलावण वाली जात अल्लाह रब्बुल इज्जत दी है। जाकू चावे इज्जत दे नक्शां दी विच जिल्लत दे देवे, ते जाकू चावे जिल्लत दे नक्शां दी विच इज्जत दे देवे। सब कुछ करण दुते कादरे मतलक है, बहु बेनियाज जात है। रब्बे कायनात दी जितनी तारीफ कीती वंजे कम है। रब्बे जुलजलाल दा असहदुते लखा करोड़ा बल्कि अनगिनत एहसानात हैं, लेकिन उन्दे विच सब तो वड़ा जरा एहसान है वो ए है कि सकू अपना प्यारा महबूब हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अता फरमाया। सिर्फ नबी नहीं अता फरमाया बल्कि सही उम्मत दे उते बेइंतहा अपने एहसानात कीते ने। ए ओ उम्मत है जिंदे वास्ते अंबिया इकराम ने दुनिया मंगे, या अल्लाह या तसे कोई उम्मत अता फरमाचा, या वल ई उम्मत दे विच असे को पैदा करचा। या रब्बे कायनात जितना भी तेरी तारीफ कीती वंजे कम है। नजरीनो समयन हवा दियां लहरां दे नाल ए आवाज त्वरे करना तक पहुंचदी पई है। रेडियो अमन FM 88.4 टांक। अज दा प्रोग्राम को तरतीब दिता है साढ़े स्टेशन मैनेजर जनाब मुहम्मद नाजमान खटक, ते तुस इन टाइम समात फरमेंदे पैहिवे सराई की प्रोग्राम फुल्ला भरी चंगेर। ए प्रोग्राम हमेशा त्वरी खिदमत विच पेश करेंदा है त्वरा आरजे मुहम्मद आदिल सियाल। अपने भिरा अपने आरजे मुहम्मद आदिल सियाल दा मुहब्बत भरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम कबूल फरमेसो।

जी सही गाल दोस्ती ते थींदी पई त हर इंसान दा जरा है ना कोई ना कोई दोस्त कोई ना कोई संगति जरूर हुंदा जरा उंदे नाल ओ डिस्कस करें दे अपने मसाइल उंदे नाल अपनी खुशी अपनी गमी कोई गाल हुंदी ये सही देखो ना एक दिली गाल है ना जेरे वेले इंसान कोई शहर तो वेंदा उथे कोई शिया देखदा है कोई घूमदा है फिरदा ना वो वापस आंदा पे पता ही वे दिली केश हुंदी केरे ले मैं को मेरा संगति मिल सी के मैं उकू दसे सा मैं तो फिलानी जात गया हम फिलानी शहर डिठी है फिलानी तो वो जेरे वेले अपने दोस्त दे नाल अपनी संगति दे नाल इंसान बांधा है तो वो कुछ सारे दिल का हवाल लेंदा है कि फिलानी जाते गया से ती में थी आई ती में थी आई तो ये सही एक दोस्ती है। दूजा इंसान दोस्त दोस्त दे ओखे वेले कम में आंदा है दोस्ती सही बेमतलब होंदी है ये याद रखो जेरा मतलब वास्ते दोस्ती रखे तेरे नाल कोई उंदा तम्मा होवे याद रखो वो दोस्त करा नहीं थी सकदा दोस्त जेरा है हमेशा बगैर क्या मतलब दे बगैर क्या मकसद दे दोस्त होंदा है लिहाजा ऐसे दोस्त जेरे बगैर क्या मतलब बगैर क्या तम्मे दे असारे नाल जुड़े हुए हैं उन्हें दी असा को जरूर कदर करनी चाहिए। सजनो तुआ को एक सराय की गीत सुनने हैं उन्दे बाद वाल जरा है असा प्रोग्राम दुते आज दे उनवान दुते गुफ्तगू दा सिलसिला जारी रखे सु तुसा वंजना की थाई भी नहीं असारा तुरा ए ताल्लुक ए जारी रासी

होते ही रिजल्ट्स ओ मैं करके दिखा दूंगा मैं आप लोगों को, बिल्कुल जी करके दिखा दूंगा। जब आप लोगे की हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लोगे, यूज कर लोगे, अपने इस्तेमाल में लेकर आओगे, इंशाल्लाह तब आप लोगों को पता लग जाएगी कि बाकी इसरा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान में रिजल्ट मौजूद है, इसरा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान में जो है ना क्वालिटी मौजूद है, इसरा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान में इसके साथ साथ बेहतरीन रिजल्ट मौजूद है। लेकिन तब जब आप लोग इंतहाब कर लोगे, यूज कर लोगे, अपने लाओगे, तब इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को महसूस हो जाएगा, इंशाल्लाह तब आप लोगों को पता लग जाएगी कि इसरा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान में बेहतरीन रिजल्ट मौजूद है।

0: तो इंशाल्लाह फिर आप लोग भूल जाओगे, इसी तरह भूल जाओगे के माँ बताएगा नोट प्रोडक्ट इस्तेमाल रिजल्ट मैंने रखू आग प्रोडक्ट बता सुधा सीर की दस बे हीर की शियागा चरता उहमना और माँ तपतरा मुख्तलि प्रोडक्ट इस्तेमाल की यूज की पम की दल विख्तान रखी जुबली दी दो यकीन था सुडी रिजात परेशान है तो परेशान रखे गए माँ यूजल यकीन यूजल इतबार पैसा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान 0335 435 3515 Hello man, hi bro. How are you? I'm ZK Wazir from Ghana. Thank you so much, dear. Thank you, bye. Welcome, bye.
1: ऐसा दिल चीर देती है।

आशाशी चौचालो मेरी प्यारी बहन, मैं अगर आपको बताऊँ ना तो मुझे मैट्रा में बिल्कुल जी खम देखता हूँ, तो मुझे नहीं पता आप किसके बारे में किस हवाले से कह रहे, आई डोंट नो। बिल्कुल जी, मैंने कभी जिंदगी में सिर्फ दो ही ड्रामे देखे हैं, एक का नाम तो मुझे याद नहीं, दूसरी है ऐदे वफा। बाकी मैंने अब तक किसी ड्रामे का इंतहाब नहीं किया है और ना मैंने देखा है, एक तो टाइम की कमी की वजह से और दूसरा

इसी तरह से अगर आप घर में सोए हुए हैं, रात का वक्त है, तो आपको लगता है कि कोई आपके घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है और वो उसका मकसद भी ठीक नहीं है उसके, क्योंकि जाहिर है रात को अगर कोई आपकी इजाजत के बगैर आपके घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है तो उसका जाहिर सी बात है कि उसके इरादे ठीक नहीं है। तो उसके अगर इरादे ठीक नहीं है और वो ये ऐसा काम करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको वार्न करें, अगर वो नहीं रुकता तो आप उसको शूट कर दें। ये भी कानून आपको इख्तियार देता है कि आप उसको शूट कर सकते हैं। इसी तरह आप कहीं जा रहे हैं, आपके घर वाले आपके साथ हैं, खवातीन आपके साथ हैं और कोई खवातीन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है और आपको अंदेशा है कि खुदा न खास्ता ये बात बहुत आगे बढ़ जाएगी, तो अगर आपके पास असलहा है अपनी प्रोटेक्शन के लिए तो आप उसको शूट कर सकते हैं ऐसे शख्स को। ये कानून आपको मुकम्मल इस चीज की इजाजत देता है, तहफ्फुज़ फराहम करने की इजाजत देता है, बल्कि कानून आपको इस हद तक भी तहफ्फुज़ फराहम करने की इजाजत देता है कि अगर आप जा रहे हैं और आप देखते हैं कि गली में, मोहल्ले में, कहीं पे भी, रोड पे कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को लूट रहा है, आपको नहीं लूट रहा, या किसी लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा है, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है, आपको नजर आ जाता है, तो आप उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए, वो जो मुलजिम है, वो जो काम कर रहा है, उसको शूट कर सकते हैं। लेकिन शर्त उसके लिए क्या है कि आपके पास अगर असलहा हो तो वो लाइसेंस्ड असला हो। हमेशा अपनी प्रोटेक्शन के लिए असलहा साथ रखें, लेकिन लाइसेंस्ड असला। अब ये हमारे इलाके में ये चीज बहुत जरूरी है। अगर आप पंजाब में घूम रहे हैं, आप लाहौर में हैं, आप वहां तो रात को 2 बजे 3 बजे आप घूम रहे हैं, आपको किसी किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं होता। लेकिन हमारे इलाकों में आजकल जो है वो हालात बहुत संगीन नौयत इख्तियार कर चुके हैं। तो ये एक बुनियादी चीज थी जो मैंने समझा कि मैं अपनी आवाम तक रखूं, आवाम को बताऊं कि जी जो तहफ्फुज़ फराहम करना है वो रियासत की जिम्मेदारी है और अगर रियासत उसमें नाकाम होते हुए हमें नजर आती है या नजर आए तो वहां पे आवाम अपने आप को खुद भी तहफ्फुज़ फराहम कर सकती है। इसके अलावा एक और यहाँ पे जो बहुत जरूरी चीज है मैं बयान करना चाहूंगा वो है एतबार। आजकल आप यकीन, एतमाद, एतबार किसी पे भी ना करें। आजकल आपका दोस्त, आपका करीबी जानने वाला वही आपका दुश्मन हो सकता है, वही आपको एतमाद में, एतबार में संगीन नुकसान पहुंचा सकता है। मैं अपनी बात करूं, मेरे घर में ऐसा वाकया हुआ कि मुझे जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो मेरे करीबी लोगों ने पहुंचाया। अब वो चूंकि आपको एतमाद होता है, आपको यकीन होता है, आप खुद को जो है वो तैयार नहीं रखते किसी भी खतरे के लिए और आप उस एतमाद में जाके जो है ना वो उसमें चले जाते हैं, उस फ्लो में, और फिर आपको संगीन नुकसान का। और आजकल टांग में अगर आप देखें तो हर दूसरा तीसरा जो वाकया हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कोई करीबी जानने वाला दोस्त अहबाब में से कोई ना कोई शामिल होता है। तो इस तरह से जो है आपने तहफ्फुज़ फराहम तो खुद को करना है, तहफ्फुज़ खुद का तहफ्फुज़ करना है, लेकिन साथ में अपना अकल भी इस्तेमाल करना है, अकल व फहम से काम लेना है, आपने दिमाग अपना खुला रखना है और सोच समझ के आपने फैसला करना है। ज्यादा जो है वो आपने किसी पे एतमाद नहीं करना, किसी पे यकीन नहीं करना, वरना आपको आजकल के हालात में ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

अच्छा, तो एफआईआर दर्ज करवाते वक्त अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी चूंकि बहुत सारे वकूए ना मालूम होते हैं, किसी ने देखा नहीं होता, लेकिन पश्तों का इलाका है, रिवाज है, लोगों को पता जरूर चल जाता है कि मेरा मुजरिम कौन है, किस कौन मेरा दुश्मन है, किसने मेरे साथ ये काम किया है। लोगों को इस चीज की खबर जरूर होती है कि मेरे प्यारे को नुकसान पहुंचाने वाला कौन है, मेरे साथ ये जुल्म ज्यादती करने वाला कौन है। लेकिन चूंकि जिसने आपको नुकसान पहुंचाना है उसने अकेले में ढूंढ के पहुंचाना है, तो चश्मदीद गवाहान जो हैं वो पराए लोग होते हैं, अपने बहुत कम होते हैं। लेकिन कानून कहता है, कानून की मंशा है कि गवाहों के बगैर आप किसी को सजा नहीं दिलवा सकते। पाकिस्तान में सजाएं वैसे ही कम हैं, 98% केसेस में लोग बरी हो जाते हैं। उसमें जो 2% लोग हैं जो सजा होते हैं, उनमें चश्मदीद गवाह का होना बहुत जरूरी है। अब चश्मदीद गवाह जब आता है अदालत में या एफआईआर में, तो उसने कुछ चीजों का ख्याल रखना होता है। वो सबसे पहले कि उसने जब गवाही देनी है तो वो गवाही उसने ऑन ओथ देनी होती है, यानी कसम उठा के देनी होती है, उसने अल्लाह की कसम उठा के फिर उसके बाद वो गवाही देनी होती है। फिर यहां पे लोग कहते हैं कि अगर हम गवाह डाल देंगे तो कल कला झूठी कसम उठानी पड़ेगी, झूठी गवाही देनी पड़ेगी, तो फिर हम क्या करें। तो भाई ये कानून की मंशा यही है, कानून का बुनियादी उसूल ये है, प्रिंसिपल ये है कि गवाही आपने कसम खा के ही देनी है, और गवाह नहीं है तो आपको आपका मुलजिम भी पता है, वो छूट भी जाएगा। तो यहां पे छूट झूठी गवाही का फिर आंसर सामने आता है, तो उसकी किसी मौलवी साहब से आप पूछें, वो आपको सही वजाहत देंगे। लेकिन मैं यहां पे सिर्फ कानून बताने बैठा हूं जो कि इंतहाई जरूरी है। गवाही क्यों जरूरी है कि अगर हम कुरान पाक का मुताला करते हैं और कुरान में अल्लाह पाक ने जो जुराइम और उनकी सजाएं तजवीज की हैं, बताई हैं, तो उन सजाओं को दिलवाने के लिए अल्लाह पाक ने एक क्राइटेरिया भी सेट किया है, और वो क्राइटेरिया ये है कि जी आपने अगर किसी जुर्म को साबित करना है और उस पर हद का लागू होना, हद क्या मतलब, वो सजा जो अल्लाह और उसके रसूल ने शरीयत में बता दी है, उस सजा को दिलवाने के लिए क्या तरीका कार फॉलो किया जाएगा, ये हमें कुरान बताता है। अब अगर आप मोटी मोटी मिसाल लें और जिना की एग्जांपल लें, मिसाल को अगर आगे रखें, तो कुरान कहता है कि अगर किसी शख्स ने जिना किया तो उसको संसार किया जाए अगर वो शादीशुदा है। अब संसार करने के लिए जो क्राइटेरिया बता दिया है वो 4 गवाहान तस्कियतु शहूद पे जो पूरा उतरते हों उनके बारे में बता दिया। अब 4 गवाहान तस्कियतु शहूद पे पूरा उतरने के मुताबिक मतलब ये है कि 4 लोगों ने उनको जिना करते हुए देखा है और वो 4 मर्द जो हैं वो बड़े नेक और अच्छे लोग हैं। अब इतना मुश्किल क्राइटेरिया रखने का मकसद ये था कि कोई किसी पे झूठा इल्जाम जिना का लगा के उसको सजा ना दिलवाए। तो आजकल के दौर में आपको ऐसे 4 लोग कहां मिलेंगे। तो इससे हमारे जो कानून है पाकिस्तान का, वो इसी चीज से जो है इनसार लेता है, इसी चीज से तकवियत लेता है कि जहां पे कुरान ने इतना सख्त क्राइटेरिया रखा है किसी जुर्म को साबित करने का, वहां पे हमारे कानून ने भी फिर सख्त क्राइटेरिया रखा है जुर्म को साबित करने का। क्योंकि कानून ये देखता है कि एक बेगुनाह अगर सजा हो जाए खुदा न ख्वास्ता, तो उससे बेहतर है कि आप 100 गुनहगारों को बरी कर दें। एक बेगुनाह को सजा देने से बेहतर है कि आप 100 गुनहगारों को सजा दे दें। मैंने बारहा अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस में देखी ये बात, यानी मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, शायद इतना 3.5-4 साल ही मैं प्रैक्टिस से मुझे जुड़े हुए हो गए। इसमें एक चीज मैंने देखी है कि मेरे सामने कोई तकरीबन 10 से 12 ऐसे केसेस गुजरे होंगे जिसमें सजाएं हुई हैं, कत्ल के केस है जिसमें उम्र कैद, एक आध अगवा का केस था जिसमें 10 साल सजा हुई, बाकी कत्ल के केसों में जो सजा हुई है तो वो सजाएं मैंने देखी, तो उन सजाओं में तकरीबन हमारे पास 10 केसेस मुझे याद पड़ते हैं। उन 10 केसेस में एक केस जो मेरे सामने गुजरा उसमें 100% बेगुनाह शख्स को उम्र कैद की सजा हो गई। अब वहां पे बेगुनाह शख्स जो है वो सजा हो गया, कत्ल किसी और ने किया था उसकी फैमिली में से, दावा उस पर हो गया, बाद में साबित हो गया केस और उसको सजा मिल गई। अब ऐसी सूरत में अगर किसी बेगुनाह को सजा दे दी जाती है तो ये पूरे के पूरे हमारे सिस्टम पे एक धब्बे की सूरत में नुमा हो जाता है। इसीलिए रियासत की कोशिश होती है कि वो बेगुनाह को सजा देने के बजाय 100-150 गुनहगारों को खैर छोड़ दें।
لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر کسی نے قتل کر لیا ہے تو وہ سال ڈیڑھ جیل میں گزارے اور اس کے بعد اس کو آپ چھوڑ دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سزا دلوانے کا کرائیٹیریا ہے وہ اتنا سخت ہے کہ اگر اس تمام تر کرائیٹیریا پہ آپ پورے اتر آتے ہیں, وہ تمام تر لوازمات آپ پورے کر لیتے ہیں, تو پھر سزا آپ کو دلوائی جائے گی اور اس کی بنیاد آپ خود رکھتے ہیں. پھر لوگ وکیلوں کو گالیاں دیتے ہیں, لوگ ججوں کو گالیاں دیتے ہیں, لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں, کنڈیم کرتے ہیں کہ ملک میں سزا

0: रेडियो अमन, कभी नरम कभी गरम। म्यूजिक, मस्ती और खूबसूरत पैगाम। हम लेके आएंगे मोहब्बत के एहसास का खूबसूरत अंदाज। रेडियो अमन, आपके मन का अमन। मन का अमन।
1: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhum Rang Aman.

मैं हूँ आसमान नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और चमकदार बालों का राज। मैं हूँ आसमा नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का

हाँ भैया ने सिंह बड़गाम दिया और हम जबरदस्त दे शिराज भाई डांस रखे ना खेल रहा वाला मत खराब आओ सर ना सुन नेट लाड़ो हाँ और भाई की शिराज और देश भी प्रोग्राम ना राजी दौरा जी बराजी आजकल ऑफिस की विषय था नूर और पंडू की और बसर दे माशाल्लाह दासी हरी की कहना जी बदी जात ना बगैर कोर नमोज बार नो जी हाँ और शिराज बस मैनेजर से देखा नूरी खबर ने कौन दखल का दौरी जिले का ही हाँ ताजुद्दीन के लिए हल का प्रोग्राम हो रही है जय शिराज उच्च अलग बस स्कोर तो बरबस जमा था पंड के दर्जी पाम के वह हाँ बेबदिन पकड़ते ही ना मुझे हल का जो रायात गिरा था गाना सो गम मैनेजर से भी कहना हाँ मास्टर मिस्टर शिराज से सलामकुम नाम भाई प्लीज न्यू न्यू प्रोग्राम कवई कहना माशाला तीन कसान यही नो यो यो कसान फ्री कवई कला खोरट हम प्रोग्राम कवई में प्रोग्राम उन्होंने देखे ना गांडी मचल खेल जाहिद नादान खबरी गुम दुआ गाने सलामुन के बिल्कुल सलाम अलैकुम नाम है संग हवरी शोरी अमेजिंग इसमी मारिया खान फ्रॉम सराय नोरंग सलाम और का मुनी बाजार सलाम अलैकुम अलीसा तो मर्दान खबरी गुम मर्दान की शीदानो बाजार की ऐसे दुकानदार दे तमाम प्रोडक्ट के सामने सलाम अलैकुम किस हूँ इनाम भाई जान मैं हूँ इश्मा 24 प्रोडक्ट इस्तेमाल की है माशाल्लाह इससे 100% मुतमईन क्योंकि भाई इश्मा के तमाम प्रोडक्ट लाजवाब है आदिया फ्रॉम टांग टांग की सदाम लादी की मंसूर जनरल स्टोर दे तमाम प्रोडक्ट सलाम लाई समय को आवाज दे बाजवल रेहान खिलजी।

सो बिल्कुल जनाब वेलकम बैक, यू आर नाउ लिसनिंग टू रेडियो अमन 88.4 टॉक एंड ग्लोबल एफएम 91.8 स्माइल खान की स्टूडियो से बिल्कुल लाइव और बराह रास्त आपका मेजबान अंशु भाई जान इज हियर। अस्सलाम वालेकुम, किवें हाल है अनस बिरा? मैं हूं हमजा बलोच फ्रॉम कुरैश से असे भीनिया बिरा मको मैं सलाम ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अस कमले लोग दी हातन है लेकिन मैं तो जेड़ा हिने कॉल आ गई देखन ए मैंने फोन लेकिन इन दी कॉल कटी गई हुई। ठीक है जी भाई, अस कमले लोग दी हातन है तेरे शार दे मस्त नजारे हैं ना, साडे कच्चे घर हिन मिट्टी दे तेरे बंगले महल चुबारे हैं, साडे कदम कदम ते कंडे हिन तेरे फुल्ला नाल गुजारे हैं, तेरा सादा जोड़ अमीर की हाँ सदा कोई कहनी तेरे सारे नहीं नहीं क्या बात। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम अनस भाई सरे यूसुफ या तबीयत से मुशदा खुद से खुद बिल्कुल सही है मसास बवाई सने मा से अनस वरो और हर खले दर तमाय मसी टी रमन न वरो या साथ हम कले वाय मफल प्रोग्राम के और बिल्कुल जनाब कॉल व एसएमएस सपारा 0317 9988 बंद सुमा कॉल कबल 0313 9988 03139679089 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं।

0: अच्छा डियर, सबसे पहले आपको और आपकी वालिदे मोहतरम को हम इस प्रोग्राम में आने पर खुश आमदीद कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप, यकीनी बात है कि टांग से तो आप नए आए नहीं हैं, दूर से आए हैं इस किस्म के हालात में, तो मैं तो बड़ा मोटिवेट हो गया हूं कि अगर वालदैन आपका साथ दें, जिस तरह फहद के बाप ने इसका साथ दिया है कि इतनी दूर से गांव से स्पेशल मेरे प्रोग्राम मैंने पर इनवाइट किया कि सर जी आप बेटे को लाएंगे, तो उसने कहा सर जी अगर आप बुलाएंगे तो क्यों नहीं आएंगे। मैंने कहा सर आपका भी बेटा है मेरा भी बेटा है, तो क्यों ना इसको मौका दिया जाए और इस किस्म का टैलेंट दुनिया को दिखाया जाए, और आसपास के देहातों में जो लोग हैं और शहर के रहने वाले लोग हैं इनको दिखाया जाए कि हम किसी से कम नहीं है। शर्त यह है कि हमें एक अच्छा इदारा दिया जाए, अच्छा उस्ताद दिया जाए, अच्छा माहौल दिया जाए, और जो तालीमी सरगर्मियां या तालीमी मकासद हासिल करने के लिए जो जरूरियात होती हैं, फैसिलिटीज दरकार होती हैं, वो हमें मुहैया की जाएं, तो हम किसी इस्लामाबाद लाहौर पिशावर में पढ़ने वाले बड़े बड़े जिनके लाखों रुपए फीसें हैं उनसे कम नहीं है। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम सर।
0: इस तरफ देखेंगे, सामने देखें, जरा ऊंचा भी बोले।
1: वालेकुम सलाम सर।
0: डियर, सबसे पहले आप अपना तारुफ करें कि आप कौन हैं, कहां से हैं और किस इदारे में पढ़ते हैं और आपके मार्क्स कितने हैं।
1: सर सबसे पहले मेरा नाम फहद अहमद मलाना है
0: जी,
1: और मैं परवाना का रिहायशी हूँ। मैं इकरा एजुकेशन सिस्टम स्कूल एंड कॉलेज टांग में पढ़ता हूँ।
0: हाँ।
1: और मैंने 562 मार्क्स हासिल किए हैं।
0: माशाल्लाह, तो आपको और अब मैंने मुबारकबाद तो आपको दी थी, लेकिन वंस अगेन सारी दुनिया हमें देख रही है, तो इस लाइव प्रोग्राम में भी और रेडियो में हजारों लोग हमें देख सुन रहे हैं, वहां पे देखा तो नहीं जाता लेकिन हजारों लोग हमें सुन, बहन बेटियां माएं हमें सुन रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनकी तरफ से भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। और डियर ये वैसे एक सवाल है कि ये जितने भी यहाँ पे मेरे शागिर्द गुजरे हैं वो मेरे गांव से होते हैं, तो आपके अबू से भी ये सवाल मैं करूंगा, लेकिन आप मुझे बताएं कि ये क्या वजह हो, वैसे सवाल पूछता हूँ, क्या वजह हो सकती है,
1: किस तरह सा
0: कि गांव वाले तकरीबन नंबर ज्यादा ले लेते हैं हालांकि वहाँ पे सहूलियात भी नहीं होती, क्या वजह हो सकती है आपकी राय में?
1: क्योंकि सर देहात की जिंदगी जो होती है सर आसान होती है, और यहाँ पर लोग ज्यादा सुस्त होते हैं सर, और जो देहाती शहरी लोग ज्यादा सुस्त होते हैं, और जो देहाती लोग होते हैं सर वो उन्होंने सर तकलीफें बर्दाश्त की होती हैं, और तालीम से उन्हें लगता है कि हमारी जो सर फ्यूचर होगा वो अच्छा बन जाएगा।
0: हाँ फ्यूचर, क्योंकि शहरी जिंदगी में इंसान मसरूफ होता है ना, और दूसरी बात डियर ये कि वो जो जिंदगी है ना गाँव वो जरा तकलीफ दे है ना और मुशक्कत वाली है, और जो गांव वाले लोग होते हैं वो मुशक्कत के आदि होते हैं, तो जिस तरह आपने ये साबित किया कि रोजाना आना और जाना कितनी मुश्किल होती है, थकना और गाड़ियों पे चढ़ना उतरना मोटरसाइकिल और ये गर्मी और सर्दी भाइयों को लाना, तो यकीनी बात है कि गांव की जिंदगी शहर की जिंदगी बनिस्बत बहुत मुश्किल और मुशक्कत भरी होती है। अच्छा जी

0: चलिए दूसरी बात ये कि आप हमें बताएं कि आपका सबसे पहले स्टडी टाइम टेबल जब आप इकरा में आए तो आपने क्या तहैया के फैसला कब किया था ये कि मैं टॉप करूंगा। आप ये पहले बताएं कि जब आपसे आप इकरा में आए हैं तो इस इदारे में आप पोजीशन लेते आए हैं या अब आपने एक नुमाया पोजीशन हासिल की है।
1: सर सबसे पहले सर मेरा जो स्टडी टाइम टेबल था सर बहुत पुराना था सर।
0: अच्छा
1: जी। मैं रोजाना सबक पढ़ता था सर।
0: मतलब कितने घंटे आप मतलब लोअर क्लासेस में कितने घंटे पढ़ते थे, जब हाई क्लासेस में आए तो उस वक्त कितने? सीधा साहब ने कैमरे की तरफ देखे और जरा ऊंचा बोले।
1: सर लोअर क्लासेस में मैं इतना ज्यादा नहीं पढ़ता था लेकिन जब 8-9 में आया तो मैंने सर स्टडी 7-8-9 घंटे शुरू की सर।
0: अच्छा तो ये आपने खुद का फैसला था या अबू ने या दादा अबू ने आपको मशवरा दिया था कि बेटा पढ़ने के बगैर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है?
1: सर मैंने खुद भी ये सर डिटरमाइन कर लिया था सर।
0: अच्छा।
1: और जो सर दादा और अबू जान का भी मुझे ज्यादा सपोर्ट रहा है इस सफर में
0: सर। वो तो मुझे पता है कि दादा अबू जान जान निकलती थी, मुझे इतना पता है जान निकलती थी आपके पीछे, वो तो मुझे पता है, अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस अता फरमाए। अच्छा और दूसरी बात ये कि आज स्टडी टाइम टेबल आपका जो था उसमें आपके साइंस सब्जेक्ट थे और आपके आर्ट सब्जेक्ट भी होंगे, तो उसमें आपने टाइम मैनेजमेंट और मतलब टाइम को कैसे तकसीम किया था साइंस सब्जेक्ट के लिए और आर्ट सब्जेक्ट के लिए?
1: सर जो मुश्किल सब्जेक्ट होते थे ना सर उनको मैं ज्यादा थोड़ा टाइम देता था ताकि वो सब्जेक्ट भी मेरे लिए आसान हो जाए और उनमें भी मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाए।
0: अच्छा।
1: मतलब कि वो सब्जेक्ट भी मैं उन पर भी अबूर हासिल कर सकूं।
0: अच्छा तो इसको मतलब कितने आप मुझे जरा तकसीम बता दें कि कितने आप कितने 8-9 घंटे तो आप पढ़ते हैं ना? तकरीबन 9 घंटे। तो इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि 9 घंटे स्टडी में आपने साइंस सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम निकाला था और कितना स्कोर किया, मतलब 60+ किया या 70+ किया, और 8 सब्जेक्ट जिसको आपने कम टाइम दिया था उसमें आपने इस तरह बताया।
1: सर मैंने जो सर साइंस के सब्जेक्ट्स थे सर उसमें से सर 3 बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स में सर 70+ स्कोर किए हैं सर।
0: माशाल्लाह। और बाकी मतलब 60+ है?
1: जी सर बाकी मैथ सर जो है उसमें मेरा 60+ उसमें थोड़े कम आ गए हैं सर।
0: अच्छा जी
1: इंशाल्लाह उसमें भी बेहतर हो जाएंगे।
0: नहीं नहीं वो क्योंकि देर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, अंग्रेजी में कहते हैं कि बेहतरी की गुंजाइश हर जगह पे होती है, तो इंशाल्लाह दूसरा मौका आपको दिया जाएगा। और इंसान वही कामयाब होता है जो मेहनत छोड़ता है, नाकामी नहीं है, नाकाम वो लोग होते हैं जो मेहनत छोड़ देते हैं। बस जो लगे रहते हैं ना तो कछुआ क्यों ना हो, खरगोश हार जाएगा और कछुआ जीत जाएगा, लेकिन उसके अंदर मुस्तकिल मिजाजी और मुसलसल मेहनत हो। ठीक है जी। अच्छा इस शानदार रिजल्ट का जो आपके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं तो इस शानदार रिजल्ट का आप क्रेडिट असातिज़ा को देंगे, वालदैन को देंगे या खुद की पढ़ाई पर आप कहेंगे कि नहीं जी सबसे पहले तो अल्लाह की मेहरबानी है, दूसरा और तीसरा और चौथा क्रेडिट आप किसको देंगे?
1: सर ये क्रेडिट इन तमाम तीनों को जाता है सर।
0: माशाल्लाह जी।
1: क्योंकि अगर असातिज़ा मेरे साथ मेहनत ना करें और वालदैन मुझे सपोर्ट ना करें और मैं खुद भी मेहनत ना करूं, क्योंकि काफी लड़के ऐसे भी हैं जिनको वालदैन सपोर्ट भी करते हैं, असातिज़ा मेहनत भी करते हैं उनके साथ, लेकिन वो खुद नहीं पढ़ते, तो मैं ये क्रेडिट तीनों को जाता है। मैंने खुद भी मेहनत की है और असातिज़ा ने भी मेरे साथ मेहनत की है, मेरी कमजोरियों को दूर किया है और वालदैन ने भी मुझे मोटिवेट किया है कि आप हर काम कर सकते हैं।
0: माशाल्लाह बहुत प्यारा खूबसूरत जवाब दिया जी। मैं एक कॉल ले लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शेव जी खैर दा?
2: अच्छा
0: अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाए।
2: हाय सर अर्ज कर रहा हूँ
0: जी।
2: हाय सर।
0: जी जी जी जी
2: अर्ज कर रहा हूँ सर।
0: जी सर मैं सुन रहा हूँ और काफी अरसे के बाद आपने हमें कॉल किया है, बीमार थे?
2: मैं गया था छुट्टियां वहाँ पर गुजारी है जी।
0: अच्छा जी ठीक है, फिर तो आपको हम खुशामदीद कहते हैं टांक आने पर सर।
2: बड़े मेहरबानी रखे वहाँ पर प्रोग्राम छुट्टियों में गुजारे।
0: माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है सर, प्रोग्राम आप सुन रहे
2: हैं? बिल्कुल आवाज बंद है
0: जी,
2: रेडियो में आवाज बंद है बिल्कुल आपका।
0: रेडियो मेरी आवाज बंद है या आप क्या कह रहे हैं?
2: आवाज नहीं आ रही बिल्कुल,
0: रेडियो में नहीं आ रही आपको? यहाँ पे तो सारे बटन ऑन है मेरे
2: जी, यहाँ पर रेडियो में आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा
0: है,
2: लेकिन जब वो बच्चा अपना वो इस्तेमाल एक बयां करा तो खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं आ रहा।
0: अच्छा जी چلو انشاءاللہ آئے گا, آپ بتائیں سر پروگرام بچے کے حوالے سے آپ کیا کہیں کہ سر اس کی جو اتنی اچیومنٹ ہے ٹانک میں اور تعلق رکھتا ہے ایک دیہات سے, تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے سر؟
2: میں تو اتنا کہوں گا کہ وہ ایک شہر ہے
0: جی سر نامی کوئی بغیر مشقت نہیں
2: ہمت کرے
0: انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. جی جی وہ کون سا اگدا ہے جو
2: خدا ہے جو واہ ہو نہیں
0: سکتا,
2: ایسا بھی ہمت کرے محنت کرے اللہ پاک اس کو اس کا اجر نہ دے پھر تو نہ ہوا نا, اللہ پاک نہ ہوا نا اس بلا.
0: ہاں ہاں ہاں بے شک بے شک محنت کا پھل
2: تو اللہ پاک ضرور دیا کرتے ہیں چاہے جس فیلڈ میں کیوں نہ ہو,
0: جی سر
2: ہو دنیا میں ہو
0: جی سر
2: اللہ پاک اس کو دیتے ہیں انشاءاللہ.
0: جی سر باقی سر مزاج جی سر آواز آ رہی ہے آپ کی سر؟
2: آج آپ کا ذرا مختصر نماز کا وقت بھی ہے مختصر ٹائم لیا
0: جی سر
2: اگلی اتوار تین سال پھر تفصیل سے آپ پاس بات ہوگی.
0: اوکے
2: نماز کا وقت ہو رہا ہے.
0: اوکے جی اوکے سر مہربانی
2: بڑی مہربانی اللہ خوش رکھے. آواز ریڈیو میں آپ کی بند ہے
0: مطلب اس میں بند ہے لکی میں نہیں آ رہی کہ ٹانک میں نہیں آ رہی؟ ہیلو
1: کٹ کیا
0: ہے چلو میں

0: सर जी, सबसे पहले आपको हमारी तरफ से और पूरे रेडियो अमन की तरफ से मुबारकबाद हो, और एक फात के हवाले से और आपके गांव के हवाले से एक सवाल, फिर आपको हम इजाजत देंगे। सर, सबसे पहले आपको मुबारक हो अपने बेटे की कामयाबी पर। सर जी, आप जवाब दें माइक में। और सर जी, एक सवाल आपसे करना है कि ये शहरी जिंदगी और गांव की जिंदगी में क्या फर्क है, उसमें बच्चे के लिए कितने चैलेंजेस होते हैं, और शहर की जिंदगी में क्या चैलेंजेस उतने ही होते हैं जितने गांव में होते हैं? सर, सर ऊंचा तरफ बोले।
1: क्रम सर, गांव और शहर में बहुत फर्क होता है।
0: जी सर,
1: गांव का बहुत से चैलेंजेस होते हैं। देखिए, हमारा एक तो कन्वेंस पूरी तरह नहीं होता, रोड खराब होते हैं। बाकी जो शहर का बच्चा होता है वो 15 मिनट में तैयार होकर स्कूल टाइम पे पहुंच जाता है।
0: सही है।
1: और हम अपने बच्चे को घंटा डेढ़ पहले तैयार करते हैं, क्योंकि स्कूल के डिसिप्लिन का भी ख्याल करना पड़ता है। और जब छुट्टी हो जाती है तो शहर का बच्चा 15 मिनट में घर जाके खाना भी खा सकता है, और हमारा बच्चा 2 घंटे छुट्टी के बाद घर पहुंचता है।
0: हाय हाय हाय हाय।
1: तो बहुत सारे मसाइल हैं, और बाद मैं कहता हूं कि अल्लाह आपको सलामत रखे।
0: आमीन।
1: जो दही इलाके का बच्चा मार्क्स लेता है, अच्छे नंबर लेता है,
0: जी सर,
1: तो सबको चाहिए कि उनकी हौसला अफजाई किया करें, क्योंकि देहात से जो बच्चा आता है वो बड़ी मुश्किलात अबूर करके आता है शहर में।
0: जी सर,
1: ऐसे नहीं होता कि बस आ गया और उसने नंबर ले लिए।
0: जी सर,
1: बहुत से चैलेंजेस का हमें मुकाबला करके बच्चे को इधर भेजना पड़ता है।
0: जी सर, बहुत शुक्रिया सर। और मजीद सर, आपकी बच्चे के हवाले से क्या इसकी मजीद रहनुमाई और मजीद कोशिश जारी रखने में इनके ताउन करेंगे सर इनके साथ?
1: इंशाल्लाह, मैंने इसको कहा कि बेटा आप पढ़े।
0: जी,
1: जितना भी हमसे हो सकेगा, आपके उस्तादों से, आपके, मैं उनसे भी मिलता रहता हूँ तकरीबन, के यार बच्चे को आप अच्छी तरह पढ़ाए। हम बहुत मुश्किलों से शहर आते हैं इधर प्राइवेट स्कूलों में, पहले तो हमने प्राइवेट देखे नहीं थे, अभी प्राइवेट स्कूल आए हैं।
0: जी सर,
1: और हम कोशिश करते हैं कि बच्चा काबिल भी है।
0: जी सर,
1: मैंने इसको कह दिया कि बेटा पढ़े, ताकि इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, कोशिश करते हैं।
0: बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे। और इस दुआ के साथ कि आपके बेटा का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर हो और वो पूरा हो।
1: आमीन, आमीन।
0: बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी।

कुछ मैसेजेस आए हैं। एहसान खान महसूद, सलाम डियर सर। वालेकुम अस्सलाम एहसान भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं। नज़ीर लैया से भी हमारे पास दो मैसेज आए हैं, तो जज़ाए खैर कि आप नज़ीर लैया हमेशा हमें मैसेज करता रहता है। खुश रहें, आबाद रहें भाई जान, और एहसान भाई का भी बहुत शुक्रिया। बाकी मैसेज शो नहीं हो रहे, इंशाल्लाह जब होंगे तो इनको हम जरूर रिप्लाई करेंगे। डियर सामीन और डियर नाज़रीन, अल्लाह तबारक ताला का बहुत बड़ा एहसान है हम पर कि आज गर्मी का कुछ जोर टूटा है, बारिश हुई है, और अल्लाह पाक जब चाहते हैं, जिस वक्त चाहते हैं, बारिश करते हैं। एक दफ़ा महकमा मौसमियात वालों ने कहा था कि मौसमियात वालों ने कहा था कि इंडिया के अंदर एक बात थी कि 6 महीने बारिश नहीं होगी ना, इस तरह कोई अपने इलम के मुताबिक उन्होंने कहा था। तो एक अल्लाह वाले के पास एक आदमी गया कि बहुत मुसीबत आ गई है, कि महकमा मौसमियात वाले कहते हैं कि 6 महीनों

तक बारिश नहीं होगी। तो उसने बहुत खूबसूरत जवाब दिया उस अल्लाह वाले ने कि बिल्कुल इनका इलम जो है वो सही कहता है कि वो अंदाजे वाला है ना, अंदाजा लगाते हैं कि होगी नहीं होगी, तो कहाँ होगी ये सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने, अल्लाह पाक जब चाहेंगे जिस वक्त चाहेंगे तो उस वक्त ये बारिश कर देंगे। तो तकरीबन कुछ घंटों बाद हिंदुस्तान में ऐसी बारिश हुई कि गलियों में आपको मतलब नाफ तक पानी आता था इतना ज्यादा, और बाजारों में पानी और हर तरफ पानी पानी, एक सैलाबी सूरत बन गई। तो जब अल्लाह पाक चाहते हैं तो बारिश फरमाते हैं, और जब अल्लाह पाक नहीं चाहते तो बारिश नहीं करते। लाख भी दुआएं कर लें, हमारे पास तो सिर्फ दुआएं करना है, अल्लाह से मांगना है। दुआएं पूरी होती हैं या नहीं होती ये मेरे रब के हाथ में है। तो डियर सामईन और डियर नाजरीन, काफ़ी गर्मी कम हो गई है, आज मैं पंखे के बगैर सोया हूँ। हालांकि मैं पंखे के बगैर कौन सो सकता है, पंखे और एसी और ठंडे कूलरों में भी इंसान को गर्मी लगती है, लेकिन आप यकीन जाने कि आज मैं पंखे के बगैर सोया हूँ। तो आज का प्रोग्राम जो आपके साथ हमने किया बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, बहुत पुरकशिश प्रोग्राम था, और बच्चे को मैंने यकीनी बात है थोड़ा सा समझाया था कि सिर्फ ये बताया था कि इंटरव्यू में आपने पजल नहीं होना, और आपने कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। इंशाल्लाह हमेशा हम आपका, हमारी सपोर्ट, हमारी रहनुमाई हमेशा, हर कोई भी स्कूल का बच्चा मेरे पास आया तो मैंने रहनुमाई ज़रूर की है। ये नहीं कि मेरे स्कूल का बच्चा है, मैं जिधर पढ़ाता हूँ उस कॉलेज का बच्चा है, नहीं। कोई भी मेल फीमेल कोई भी किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया है तो मैंने कभी भी इनकार नहीं किया। मैंने कहा मेरे दरवाजे खुले हैं, किसी किस्म की रहनुमाई लें, कहीं पे कोई मिन्नत करनी है, कहीं पे कहीं जाना है, या कोई एप्लीकेशन लिखनी है, या किसी को किसी पे काम करवाना है। मैंने कहा मेरे चलने से अगर तेरा काम होता है, मेरी गुफ्तगू से अगर आपकी ज़िंदगी बनती है तो वेलकम और मोस्ट वेलकम। हमेशा हम टांग की और टांग के मजाफात की खिदमत इल्मी लिहाज से, रहनुमाई के लिहाज से पहले भी की थी, अब भी कर रहे हैं, और जब तक सांसों का तार टूटा नहीं है। ये तार जो है ना, सांसों का एक सिलसिला है, एक सांस के बाद दूसरी सांस का आना और जाना, जब तक ये सिलसिला है इंशाल्लाह हम आपके साथ हर लेवल पे शाना बशाना खड़े रहेंगे। और

बेवजह तो नहीं है चमन की तबाहियां, बेवजह तो नहीं है चमन की तबाहियां, कुछ बागबां हैं बरको शहर से मिले हुए। बेवजह तो नहीं है चमन की तबाहियां, बेवजह तो नहीं है चमन की तबाहियां, कुछ बागबां हैं बरको शरर से मिले हुए। जो अदूए बाग हो बर्बाद हो, जो अदूए बाग हो बर्बाद हो, गुलची हो या सयाद हो, जो अदूए बाग हो बर्बाद हो, जो अदूए बाग हो बर्बाद हो, चाहे गुलची हो या सयाद हो। फी अमानिल्ला, हयात बाकी तो मुलाकात बाकी।

0: लुगने लगी दिल द वजूद सुस्ती प्रास्टेट दमला दर्द द जुड़ी बीमारी
1: You are listening to Radio Amrit Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
0: For 331-52-65-340. पता याद साथे पिशावर हेल्थ मेडिकल सेंटर मलिक सिंजीत मखामख सिविक प्लाजा जेल

0: तुनूरे महताब है, तुनूरे महताब है, तुनूए आफताब है, मेरी धड़कनों का रक्स है, मेरी रूह का रबाब है। तुनूरे महताब है, तुनूए आफताब है, मेरी धड़कनों का रक्स है, मेरी रूह का रबाब है।
1: अब मेरा कोई सफर नहीं,
0: वो मोहब्बत करके भूल गया, वो मोहब्बत करके भूल गया तो क्या हुआ। लोग हाथों से दफना के भूल जाते हैं कि कब्र कौन सी है।

एकदम से मेरी आंखों का नजारा बदल गया, एकदम से मेरी आंख का नजारा बदल गया, जब वो ठीक होके दोबारा बदल गया, बातें बदल गई, वो लहजा बदल गया, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो सारा बदल गया। नाराज तो हम खुद से हैं, नाराज तो हम खुद से हैं, आपसे तो आज भी इश्क है।

मुझे शक है मेरे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे, हमेशा की तरह मेरे पसंदीदा लाइंस। मुझे शक है मेरे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे, मुझे लगता है मैं जवानी में मरूंगा।

तू तू तू जीत के भी रो पड़ेगा, तू जीत के भी रो पड़ेगा, हम तुझसे ऐसा हारेंगे। अब मुझे उलझना नहीं आता, अब मुझे उलझना नहीं आता, अब मैं हार मान लेता हूं।

कहा था ना, मैंने कहा था ना कि यूं सोते हुए मत छोड़ के जाना, मुझे बेशक जगा देना, बता देना, तुम्हें रास्ता बदलना है, मेरी हद से निकलना है।

कभी देखी है, कभी देखी है जिंदगी ने ऐसी अजियत तुमने, कभी देखी है, कभी देखी है जिंदगी ने ऐसी अजियत तुमने, कोई आप कहे फिर तुम कहे फिर तुमसे कहे तुम कौन हो।